number one radio station. Radio Olive 106.3 FM.

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।
1: अभी बजाएगा ना भिड़ो।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
3: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
2: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
3: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
2: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
4: मैं हूं अनिल कपूर, रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
5: सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।
2: ओह नो, फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अब उसिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। वेन्यू पार्टनर अबूसिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबूसिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
3: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
2: एंड
3: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
2: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
3: कॉल 7022525।
2: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
4: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
2: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding. At

0: song.
1: Radio Olive par aane wala gana cool song of the hour.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
0: cool song.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: This is Amaira Dastoor on Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फिर से स्कूल? अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा, सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉन स्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हेलो टू ऑल द लिसनर्स ऑफ रेडियो ऑलिव।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: ओह नो, फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉन स्टॉप धमाल। किताबें खोलने से

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
0: रेडियो ऑलिव पर
2: फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना, फ्रेश है
0: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है कूल सॉन्ग।

हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार। लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर ऑफर के साथ।
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
0: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टाकुलर offer.
2: Hi, this is Kailash Kher and you are listening to Qatar's first Hindi radio station, Radio Olive.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: यू आर लिसनिंग टू कतार्स नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव 106.3 FM. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: की शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर। बी

वो पाट दे तूड़ा।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ओलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
2: कॉल 7022525।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
3: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding at the

एक अलग टाइप की कशिश है इस गाने में। एंड देखिए ये कशिश अलग है, लेकिन आपकी वाली कशिश जो है वो अपना शो लेकर आ चुकी है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ओलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश, जो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, जो आप उन लोगों में से हो जिनकी आज भी छुट्टी है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आप एक और दिन वीकेंड इंजॉय कर रहे हो। लेकिन अगर आप मेरी तरह है जिनका आज वीकेंड नहीं है, जिन्हें आज जो है काम पे जाना पड़ रहा है, तो आई फील बैड फॉर यू ब्रदर सिस्टर। क्योंकि देखो मेरा काम तो फन है, मुझे आप लोगों से बात करने का मौका मिलता है तो मुझे तो अच्छा ही लगता है, मेरा काम बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप जो है थोड़ा सा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो कि यार काम पे जाना पड़ रहा है, वीकेंड के बाद जो है काम पे नहीं जाया जाता, तो देखिए उस फीलिंग को भगाने के लिए मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाऊंगी, एटलीस्ट कोशिश करूंगी, ताकि आपको जो है वो जो सैडनेस हो रही है, वो जो लो आप जाते जा रहे हो ना, वो ना हो। फिलहाल देखिए आज के शो की शुरुआत हम वल्लाह गाने से करने वाले हैं, कॉकटेल 2 का ये गाना है। आप देखिए मोहम्मद यूसुफ खान जी जो है वो कहेंगे कि कशिश फिर से कॉकटेल 2 का गाना, ऑफ कोर्स देखो एक अलग वाइब है इन गानों में, सो ये गाने आप एंजॉय करके आइए। उसके बाद जो है बहुत सारी बातचीत जो है वो हम करने वाले हैं। कल जो है मेरा हैप्पी वाला बर्थडे था, सो उस पर मैंने क्या कुछ किया, कल वीकेंड था तो उस पर मैंने क्या कुछ किया, एंड उसके बाद आप लोगों ने क्या किया वो भी मुझे जानना है, एंड फिर बॉलीवुड में क्या कुछ चल रहा है, स्ट्रेस को कैसे दूर भगा सकते हैं, फैशन की दुनिया में क्या चल रहा है, सब कुछ जानेंगे। लेकिन उसके लिए आप बस वॉल्यूम बढ़ाकर स्टे ट्यून रहना पड़ेगा 106.3 रेडियो ऑलिव पर। फिलहाल ये अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जी ओविंदा। Yes.

0: हां जी, आई एम बैक. वेलकम, मैं हूँ आपकी कसूर और शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहां पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ. आप देखो यार, कल जो है जैसे ही मैं अपना बर्थडे मनाने के लिए बाहर निकली, वैसे ही हवाएं चल रही थी एंड टू माय सरप्राइज ये हवाएं जो है ठंडी ठंडी थी. यस, ह्यूमिडिटी थोड़ी सी कम थी कल हवाओं में. आई डोंट नो इन हवाओं ने मेरे बर्थडे के लिए अपना रुख बदल लिया था या क्या हुआ था, लेकिन थोड़ी सी कम गर्मी कल पड़ रही थी. एटलीस्ट जब मैं बाहर निकली तब, मैं बात कर रही हूँ कुछ 7 बजे के आसपास की, 6:30-7 बजे के आसपास की, और तब थोड़ी सी यू नो माहौल नॉर्मल सा हो रखा था, ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं थी, तो मेरा बर्थडे तो अच्छे से मन गया. लेकिन आज जो है ऐसा सिनेरियो बिल्कुल नहीं रहने वाला है, बहुत ज़्यादा सनी होने वाला है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड रहने वाला है. 37 डिग्री सेल्सियस इस वक्त का टेम्परेचर दोहा में हो रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस आज का हाइएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है एंड 31 डिग्री सेल्सियस आज का लोएस्ट टेम्परेचर जाने वाला है. तो बस आपसे मैं वही कहूँगी जो हर रोज़ कहती हूँ कि सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना एंड जितना हाइड्रेटेड रहोगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा. बाकी इस हीट को बीट करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा तरीका है, वो है कूल सॉन्ग ऑफ द आवर एंजॉय करना. सो जल्दी से ये गाना जो है मैं आपको जो सुना रही हूँ इसे एंजॉय करके आओ एंड 3311063 पर गाना एंजॉय करते करते सुनते सुनते ये बता दो कि आपका वीकेंड कैसा रहा एंड क्या कुछ आपने खास किया एंड क्या कुछ आज का प्लान है, जो मन करे आप वो मुझे बता सकते हो. तो जल्दी से डायल करो 3311063, ऑडियो नोट भेज दो, वीडियो भेज दो या फोटो भेज दो अपनी कि बाहर मौसम कैसा हो रहा है, और एक मैसेज तो आप भेज ही सकते हो, हाय हेलो गुड मॉर्निंग ही कर दो यार आपकी कसूस को. फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आर आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाओ, एंजॉय करो आपकी कसूस के साथ और कहते रहो जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स,
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर।

सोचा ना था मूवी का ये ट्रैक जो है आपने इंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर। और मैंने नहीं सोचा था कि मुझे कतर में अकेले लाइफ में मतलब पहली बार अकेले अपना बर्थडे मनाकर जो है मजा आएगा। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, कल शाम को आपको 4 बजे जो है मैं मिलने आई थी अपना टेक शो लेकर, जहाँ पर हमने बात करी थी टेक्नोलॉजी की। एंड मैंने ये भी आप लोगों से पूछा था कि क्या कुछ खास जो है आप कर रहे हैं अपने वीकेंड पर। सो बस उसी के जो है चर्चे ज़रा एक बार कर लेते हैं। अगर मैं बताऊँ मैंने भी कल क्या किया। सो रात को जो है मुझे 2 वक्त पर मैसेजेस आ रहे थे, एक कतर के 12 बजे और एक इंडिया के 12 बजे, क्योंकि सब मुझे विश कर रहे थे। तो सब ने मुझे विश किया, सो मैं लेट सोई एंड फिर मैं जब उठी तो उसके बाद मैंने जो है सोचा कि यार सबसे पहले तो जो है अपन कोई अच्छा कंटेंट जो है वो देखेंगे ताकि वाइब बन जाए। तो जो कंटेंट मैंने देखा है वही आज की मूवी रिकमेंडेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। देन मैं जो है बाहर गई थी, हाला शॉपिंग फेस्ट जो है वहाँ वो चल रहा है, सो मैं गई थी एंड मैंने देखा, एक्सप्लोर किया। आप लोग भी एक बार ज़रूर से एक्सप्लोर कीजिए एंड बाकी आप लोगों ने क्या किया वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो मोहम्मद यूसुफ खान जी का मैसेज जो है वो हम पढ़ लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम यूसुफ जी, उन्होंने लिखा है, हेलो कशिश, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, होप वेल। जी जी बिल्कुल बढ़िया हूँ मैं तो, एंड हैप्पी सैटरडे मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। यूसुफ खान जी पूछ रहे हैं कैसा रहा आपका बर्थडे सेलिब्रेशन कल, होप वेल एंड एन्जॉय। ऑफकोर्स वही मैं बता रही थी कि कल मैंने बहुत इन्जॉय किया एंड थैंक यू सो मच, आप सबकी विशेज ने और ज़्यादा खास बना दिया। एंड कल शाम को जब मैंने बोला था कि मुझे जल्दी जल्दी विश कर दो, तो भी बहुत सारे लोगों ने मुझे विश किया था, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। एंड अबरार जी ने एक बहुत ही खूबसूरत सी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी सैटरडे वाली फ़ोटो भेजी है, थैंक यू सो मच। एंड बाकी सब बहुत सारे लोगों ने जो है वो हमें मैसेजेस किए हैं, हैप्पी बर्थडे कशिश जी लिखा है अब्दुल रहमान जी ने, थैंक यू सो मच। एंड ओहो वाओ, मतलब अरे यार बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है, कल मैं सबके मैसेजेस पढ़ नहीं पाई थी, अभी मैं जैसे ही स्क्रॉल कर रही हूँ तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया हुआ है, तो मैं इन मैसेजेस को ज़रा तसल्ली से जो है पढ़कर आती हूँ। आप जो है किल दिस मूवी से एक अमेजिंग गाना जो है वो इन्जॉय करो, उसके बाद ज़रा हम बात करेंगे कि अगर आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रेस है तो उसे दूर किस तरीके से भगाया जा सकता है। मैं हूँ आपकी कसोस, वॉल्यूम बढ़ाओ, इन्जॉय करो ये गाना और स्टे ट्यून्ड रहो, कहते रहो जियो बिंदास।

0: मुझसे प्यार है।
1: Hi Radio Olive 106.3 listeners, this is Ranveer Singh. Stay tuned.

0: आंख मारने के जो मामले में ना मैं जो है सारा अली खान जैसी हूँ, मुझे भी आंख मारनी नहीं आती। मैं आंख मारने की कोशिश करती हूँ, मैं ब्लिंक कर लेती हूँ, विंक वाली चीज हो ही नहीं रही है। मुझे इतना भी विंक नहीं होता है कि मेरे फोन में भी आंख मारने वाला इमोजी नहीं है, विंक वाला इमोजी ही नहीं है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त हम बना रहे हैं। अब देखो यार, मैंने जो है आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जिससे आप अपना स्ट्रेस जो है वो कम कर सकते हैं या तो कंट्रोल कर सकते हैं आपकी एंजाइटी को। लेकिन उससे पहले जो है जो मैसेजेस आए हुए हैं वो पढ़ लेते हैं। सो मोहम्मद यूसुफ खान जी ने एक और मैसेज लिखा है। मुझे ऐसा लगता है कि हम ना टू वे कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं, मैं यहाँ से बोलती हूँ, वहाँ से मैसेज करते हैं। आप लोगों को भी अगर ये कम्युनिकेशन चाहिए तो आप लोग भी मुझे मैसेज कर सकते हैं 3311063 पर। फिलहाल मेरे बर्थडे प्लान पे जो है इन्होंने कहा है माशाल्लाह माशाल्लाह, लॉट्स ऑफ मैसेजेस एंड विशेस इन योर बर्थडे, अल्लाह खुश रखे, हंसते मुस्कुराते रखे, आमीन। थैंक यू सो मच मोहम्मद यूसुफ जी, थैंक यू सो मच। एंड मुझे एक और मैसेज आया है, मुझे नहीं पता इनका नाम जो है वो शायद मेंशन नहीं है, बट इन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग कशिश जी, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू मैडम, आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो, आपकी आवाज़ सुनकर दिल को सुकून मिल जाता है, 70 डेज के बाद आपको सुन रहा हूँ, अलग ही सुकून है आपकी आवाज़ में, आप जियो हज़ारों साल, मुदस्सिर जी है और ये पाकिस्तान से है। थैंक यू सो मच मुदस्सिर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब खैर आप सबके स्ट्रेस को दूर भगाने वाली बात पे वापस आ जाते हैं, बर्थडे तो कल हो गया ना। सो अगर आपको अपना स्ट्रेस जो है कम करना है या अपनी एंजाइटी आपको जो है कंट्रोल रखनी है तो आपको जो है बॉक्स ब्रीदिंग करना ट्राई करना है। हाँ जी, व्हाट्सएप पे जो है काफ़ी बार ऐसी वीडियोस आ जाती हैं जो आपको बॉक्स ब्रीदिंग करना सिखाती हैं। सो इसमें क्या होता है कि आपको 4 सेकेंड तक सांस लेनी है, 4 सेकेंड सांस रोकनी है एंड 4 सेकेंड जो है एक्सहेल करनी है और इमेजिन करना है कि आप एक ये बॉक्स जो है वो पूरा कर रहे हैं और इस प्रोसेस को जो है एटलीस्ट 1 मिनट तक आपको करना है। तो उससे क्या होगा कि आपके बॉडी को जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा एंड आपका स्ट्रेस जो है वो इवेंचुअली कम हो जाएगा। यस, एंड ये वर्क करता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है एंड मैंने भी ट्राई किया है। सो बॉक्स ब्रीदिंग जो है आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। इसमें आपको बस 4 सेकेंड अपनी सांस जो है उसे रोकना है, सांस लेनी है एंड सांस एक्सहेल करनी है 4 सेकेंड के लिए। सो एक बार करके देखिए, अगर आपके लिए भी काम करता है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं बाकी लोगों को बता सकूं कि देखो सिर्फ मैं नहीं हूँ जिसके साथ ही काम करता है, सबके साथ करता है। फिलहाल बंद हो 2.0 कॉकटेल 2 मूवी से आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाओ, एंजॉय करो फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में कदर की सारी खबरों के साथ, सारी अपडेट्स के साथ। ऑलिव अपडेट में स्टे ट्यून्ड रहो, जियो बिंदास।
1: Song of the Hour. Yeah, Ghana.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

0: उर्वशी उर्वशी, इतनी बार आपने पुकारा लेकिन उर्वशी तो नहीं आई, आपकी कशिश जरूर आ गई। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल ओवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए यार, आज जो है मुद्दा बड़ा ही स्पेशल है हमारी बातचीत का, बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो हुआ क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सो रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक खबर जो है वो मेरे सामने आई, मेरी फीड पर आई, जहाँ पर एक लड़के ने, जब वो डेट पर गया हुआ था, जिस लड़की से वो मिलने गया था उसको जो है वो उठकर छोड़कर अपने घर चला आया एंड मैसेज पे उसे सॉरी लिखा कि सॉरी यार मैं तुम्हें छोड़कर जो है वो रेस्टोरेंट में आ गया, बट मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा था। लड़की ने पूछा कि ये कैसा बिहेवियर हुआ, ऐसा क्यों किया तुमने? तो उसने बोला कि यार तुम ना जिस तरीके से खा रही थी और तुमने इतना सारा खाना खा लिया था तो मुझे ना बड़ा अजीब सा लगने लग गया था, एंड अभी भी मैं जो है वो वक्त नहीं भुला पा रहा हूँ, वो सीन नहीं भुला पा रहा हूँ जब तुमने इतना सारा कौसा जो है इतना सारा खाना अपने मुँह में भर लिया था कि तुम ऑलमोस्ट चोक होने वाली थी, तुम्हें सांस लेने नहीं बन रही थी, लेकिन फिर भी तुम खाना नहीं रोक रही थी, इसीलिए मैं जो है ये डेट कंटिन्यू नहीं कर सकता था, मैं तुम्हारे साथ डिनर कंटिन्यू नहीं कर सकता था, इसलिए मैं उठ के आ गया। आप बताओ ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या इस लड़के ने सही किया या गलत किया, आपको क्या लगता है? या फर्स्ट डेट पे जो सोफिस्टिकेशन की बात होती है कि थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए या जो है थोड़ा अपना असली रूप नहीं दिखाना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए था लड़की को, कि किसकी गलती थी, आपको क्या लगता है? वैसे ये बिल्कुल भी ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर फन, क्योंकि हमें तो गॉसिप की आदत है, सो हम जो है इस पर बात करेंगे। आप मुझे बताइए कि किसने सही किया, आप किसके साइड पर हैं, लड़के की साइड पर हैं या लड़की के साइड पर है? 3311063 पर आगे बस मुझे येस या नो लिख दीजिए। अगर आप रीज़न बता देंगे कि क्यों साथ दे रहे हैं तो वो भी अच्छा होगा, वरना येस और नो लिख दीजिए कि हाँ लड़के ने सही किया तो येस, अगर लड़के ने गलत किया तो नो। बताइए मुझे 3311063 पर मैसेज करके कि आपको क्या लगता है कि लड़की को यार पहली डेट पे थोड़ा सा फेक कर देना चाहिए था कि यार नहीं मैं थोड़ा थोड़ा ही खाती हूँ, या उसने सही किया कि जैसी वो है उसने अपना रियल सेल्फ जो है वो दिखाया, एंड लड़के ने गलत किया उसे छोड़कर जो है अपने घर जाकर उससे वो कन्फ्रंट भी कर सकता था। सो आपको क्या लगता है ऑल एंड ऑल, ये मुझे बताइए 3311063 पर मैसेज करके। फिलहाल एक बहुत ही बढ़िया वाला कूल सा गाना जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, कूल सॉन्ग ऑफ द आर जो है आ रहा है, सो इसे जो है वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: बिंदास।
2: ओह नो, फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ओलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
3: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
2: एंड
3: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
2: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
3: कॉल 7022525।
2: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
0: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
2: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding. At

शाहरुख खान के गाने के जस्ट बाद जो है यहाँ पर पहुंच चुकी है। मेरा नाम है कशिश, आपकी कशिश जो है वो हम कहते हैं मुझे, मैं खुद ही खुद को आपकी कशिश कहती हूँ। लाइव मस्त शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश करती हूँ, कुछ ना कुछ ऐड ऑन करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसपे आई डोंट नो हमें बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मतलब हमें गॉसिप करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। लेकिन इंस्टाग्राम पे मैंने जो है एक पोस्ट देखा था जहाँ पर एक लड़का बीच डेट में से, बीच डिनर में से, पहली मुलाकात में से जो है लड़की के सामने से उठकर चला गया क्योंकि उस लड़की ने खाना बहुत सारा ऑर्डर कर दिया था एंड वो खा भी रही थी अच्छी तरीके से। एंड फिर मैसेज पे सॉरी वॉरी कहा और कहा कि यार मैं ना वो सीन भूल ही नहीं पा रहा हूँ जब तुम एकदम चौक ही हो रही थी खाना खा कर कि तुम्हें सांस लेते नहीं बन रहा था लेकिन फिर भी तुम खाए जा रही थी। सो मुझे जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर वहां से आ गया। अब मैंने बस ये पूछा था आपसे कि आपको क्या लगता है कि क्या लड़के ने सही किया। एक बेनाम गुमनाम सा मैसेज मेरे पास आया है, इनका नाम नहीं लिखा है लेकिन उन्होंने लिखा द बॉय डिड अ वेरी रॉन्ग थिंग, फूड इज फूड एंड इट इज ईटन जस्ट लाइक इट इज गर्ल एट इट, ओके द बॉयज थिंकिंग वॉज वेरी स्मॉल, ओके ठीक है ये बात आपने सही करी। उसके बाद सलीम जी का मैसेज आया, उन्होंने लिखा यस लड़के ने सही किया, सलीम फ्रॉम हैदराबाद इंडिया। बाकी सब लोग तो मुझे अभी भी बर्थडे ही विश कर रहे हैं तो थैंक यू, हैप्पी बर्थडे आजय कशिश जी, थैंक यू सो मच। एंड उसके बाद भी एक दो मैसेजेस मुझे आए हैं, मुझे मैसेज आया है उसमें लिखा है गुड मॉर्निंग कशिश जी, हैप्पी बर्थडे डियर, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, थैंक यू सो मच हिमकुश जी, थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही आपके बहुत सारी विशेस के लिए थैंक यू सो मच। एंड अब हमारे पास जो है 1-1 वाला स्कोर हो चुका है, मतलब एक हमारे लिसनर ने कहा है कि लड़की ने सही किया, वो बस खाना खा रही थी, खाना तो खाने जैसे ही खाया जाता है, एंड किसी ने कहा कि लड़के ने सही किया। आप बताइए आपको क्या लगता है, मॉरल ग्राउंड पे नहीं, जस्ट आपका ओपिनियन जो है वो पूछा जा रहा है। 3311063 इज द नंबर, आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं, वरना आकर जो है मैंने कौन सी मूवी वीकेंड पर देखी और आपको मैं रिकमेंड करने वाली क्योंकि बहुत अच्छी मूवी थी, लो बजट है लेकिन बहुत अच्छी है। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, एंजॉय कीजिए, वॉल्यूम बढ़ा के, मैं हूँ आपकी कशिश जियो बिंदास।

0: Yes, guys, I'm a firecracker. मैं वो पटाखा हूँ जो शायद वादे कर देता है लेकिन फुस भी हो जाता है. वेलकम जी, 106.3 रेडियो ऑल एफ पर मैं हूँ आपकी कशुशन शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ. अब देखो यार, मूवी रिकमेंडेशन देने के लिए मैं यहाँ आ गई हूँ. वो मूवी मैं आपको बताने वाली हूँ जो मैंने कल इन्जॉय की. वैसे तो ये मूवी मैं पहले भी देख चुकी हूँ लेकिन कल मैंने अच्छे से बैठ कर देखी है. सो मूवी का नाम है कारवां. 2018 की ये मूवी है. इरफान खान, दुलकर सलमान और मिथिला पाटनकर की जो है ये मूवी है. बहुत ही ब्यूटीफुली इसको जो है बनाया गया है, बहुत खूबसूरती से बनाया गया है. देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी, लाइट हार्टेड है एंड इमोशनल भी है. एंड बीच बीच में इरफान खान साहब के जो वन लाइनर है, जो उनका एक्सेंट है, वो काम कर जाता है यार. देखो दुलकर सलमान की हिंदी डेब्यू मूवी जो है ये है एंड थोड़ा सा जेंसी टच जो है वो मिथिला ने इसको दे दिया है. एंड टोटल जो है एफर्टलेस कॉमेडी है डीप मीनिंग के साथ. तो अगर आपको कोई ऐसी मूवी देखनी है जो इमोशनल हो लेकिन हैवी ऑन हार्ट नहीं हो, सो ये मूवी आप दे सकते हैं. सो जाइए जाकर देखिए. एंड फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर. वॉल्यूम बढ़ाओ एंड इश्क कमीना 2.0 इंजॉय करो आपकी कशिश के साथ. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: Song of the hour.
2: ये गाना
3: करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याल दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हमशक्ल.

देखिए दूरियां तो हैं लेकिन ये दूरियां बातचीत से जो है वो कम करी जा सकती हैं। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल एफएम, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए यार, कल मेरा बर्थडे था, ये मैं अब हर थोड़ी देर में आपको याद दिला रही हूँ, आप लोगों की विशेज जो है वो भी मेरे पास आती जा रही हैं। लेकिन एक लड़की के लिए बर्थडे पे मतलब कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और वो होती है ड्रेस। सो मुझे ना मतलब जून जुलाई से ही अपनी ड्रेस की जो है टेंशन होनी शुरू हो गई थी कि ड्रेस तो मैंने ली नहीं है। एंड सच में दो दिन पहले तक मैं रो रही थी कि यार मेरे पास ड्रेस ही नहीं है, मैं क्या पहनूंगी। ऑल दो मेरे पास बहुत सारे नए कपड़े हैं, आज भी जो मैंने ड्रेस पहनी है वो भी न्यू है, मुझे गिफ्ट में मिली है, बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन फिर भी मुझे मेरी वो बर्थडे ड्रेस जो है वो नहीं मिल रही थी। मतलब ऐसी ड्रेस होती है बर्थडे ड्रेस जिसको देखने के बाद आपकी आंखों में चमक सी आ जाए, और वो चमक जो है वो किसी ड्रेस को देख कर आ नहीं रही थी। मैं रो रही थी कि यार ये क्या हो रहा है। तब मुझे जो है एक ड्रेस दिखी फाइनली अपने बर्थडे के एक दिन पहले, एंड वो मैंने ले ली। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये स्टोरी मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि इस वक्त जो है ड्रेसेस में आप कोई भी ए लाइन ड्रेस या फुल लेंथ ड्रेस जब आप देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि एक पैटर्न जो है वो काफ़ी जो है चल रहा है, एंड दैट पैटर्न इज कि स्लाइटली आपकी जो वेस्ट होती है उस पर जो है एक वी कट जो है बेसिकली हर ड्रेस में आजकल आ रहा है। चाहे आप अनारकलीज देख लें, आप लॉन्ग ड्रेसेस देख लें, मिडी ड्रेसेस, शॉर्ट ड्रेसेस, कुछ भी देखें, आपको एक स्लाइट वी जो है आपकी वेस्ट पर दिखेगा, जिसे जो है इस वक्त काफ़ी इन ट्रेंड कहा जा रहा है। सो जितनी भी ड्रेसेस हैं, चाहे वो वेडिंग ड्रेसेस ही क्यों ना हो, उनमें जो है वो वी आपको देखने को मिलेगा। इससे क्या होता है कि आपकी वेस्ट जो है वो काफ़ी सिंच्ड लगती है एंड काफ़ी एक पॉलिश्ड लुक आता है। सो अगर अभी तक आप ऐसी कोई ड्रेस जो है वो ओन नहीं करते हैं तो आप इसको बार ट्राई जो है कर सकते हैं, एंड सच में एक बहुत ही पॉलिश्ड और एक बहुत ही अच्छा लुक जो है वो आपको मिलेगा। मेरी जो न्यू बर्थडे ड्रेस है उसमें भी ये लुक है। एंड एक बात और आपसे मैं शेयर करना चाहती हूँ, कितना रोने के बाद मैंने नई ड्रेस ले तो ली, लेकिन अपने बर्थडे पे वो ड्रेस पहनी नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि यार अच्छी फोटोज अभी नहीं आ पाएगी, तो जब अच्छी फोटोज आ पाएगी मैं तब वो ड्रेस पहनूंगी। फिलहाल तबाही गाना टॉक्सिक मूवीज आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए। खैर आने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात आपको मुझे बतानी है, ना आप लोग बहुत सारे सवाल मुझसे कर रहे हो बैक टू स्कूल को लेकर भी, सो उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है। सो स्टे ट्यून रहिए आपकी कशिश के साथ, वॉल्यूम बढ़ा के एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: हाय रेडियो ओलिव 106.3 लिसनर्स, दिस इज शाहरुख खान।
4: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: स्टूडियो में बैठे बैठे मैं किसी की तो शादी में पहुंच गई, मुझे नहीं पता किसकी शादी थी, लेकिन मेरे सामने बहुत अमेजिंग वाला खाना था एंड अमेजिंग म्यूजिक चल रहा था। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल ओवर, मैं हूँ आपकी कसुस एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रही हूँ। अब देखो यार, काफी सारे लोग मुझे हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं। मोहम्मद सामी जी ने भी मुझे बहुत प्यारी विश भेजी है एंड उस पर लिखा है कि सॉरी फॉर लेट बर्थडे विशेज। कोई बात नहीं यार, आप तो कर ही सकते हो इतना। खैर बहुत सारे लोग ये वो भी कह रहे हैं कि यार हम ना छुट्टी पे गए हुए थे और उसके बाद अब हम वापस आए हैं समर वेकेशन से एंड आपको सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सो देखिए, समर वेकेशन जो है वो खत्म हो चुके हैं या कुछ लोगों के खत्म होने वाले हैं, लेकिन अभी जो है एक पार्टी जो है वो बाकी है। रेडियो ऑलिव जो है वो लेकर आया है बैक टू स्कूल बैश अबू सिद्रा मॉल में इस 27 अगस्त को दोपहर 3 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, जहां पर आपके बच्चों के लिए एपिक गेम्स होने वाले, क्रेजी चैलेंजेस होने वाले एंड नॉन स्टॉप धमाल होने वाला है। सो किताबें जो है वो खोलने से पहले एक बार खुल के इंजॉय करने का मौका हम आपके बच्चों को दे रहे हैं। एंड काफी सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया था कि यार कशिश हमने रजिस्टर कर दिया लेकिन हमारे पास कॉल नहीं पहुंचा है। सो मैं आपको बोलना ये चाहती हूँ कि अगर आपने इसमें रजिस्टर किया है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन एकदम कन्फर्म समझिए। हम जो है 27 अगस्त को मिलने वाले हैं अबू सिद्रा मॉल में। सो आ जाइएगा, बहुत सारा इंजॉय जो है वो हम करने वाले हैं। स्टे ट्यून रहिए आपकी कशिश के साथ। बाकी अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में चाहिए हो तो वो हमारी वेबसाइट पे olive.qa पे आपको मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर हम सारी अपडेट्स जो है वो आपको देने हैं और साथ में आप व्हाट्सएप तो कर ही सकते हैं जैसे आप अभी कर रहे हैं एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
1: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
1: And
2: Doha Center, shop more, pay less.
1: Old Airport Road, Doha and Alcor.
2: Call 70222525.
1: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
3: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding at the

0: तो देखिए अब स्कूल बातचीत के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कूल सॉन्ग ऑफ द आवर जो है वो हमें एंजॉय कर लेना चाहिए. तो सनमपुरी की आवाज में है अपना दिल तो आवारा, ये गाना जो है प्यारा सा आ रहा है. अभी रेडियो सेट पे वॉल्यूम बढ़ाइए, एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.

यार, आप लोग मुझे ऐसा लगता है कि मेरे रंग में रंग चुके हैं, मेरी वाइब से एकदम अपनी वाइब को मैच करके चल रहे हैं यार। वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूं आपकी कसूस एंड शो आपके लिए लेकर जो है आ चुकी हूं लाइफ मस्त है, जहां आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूं। एंड काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मुझे आपको बतानी थी, लेकिन यार ये वक्त की कमी हो जाती है ना, तो मैं बात नहीं कर पाती आपसे। लेकिन कोई बात नहीं, हर रोज़ हमारी मुलाकात होती है। याद रखिए, वीकेंड पे भी हम 4 से 6 बजे के बीच में जो है अपनी टेक वाली बातचीत जो है वो जारी रखते हैं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं खैर आपको पहले प्रायोरिटी से बताना चाहती हूँ कि अभी तक अगर आपने रेडियो ऑलिव की इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो नहीं किया है तो आप बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अमेजिंग कॉन्टेंट को जो है मिस आउट कर रहे हो। फनी कॉन्टेंट, इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट एंड पॉडकास्ट, इतनी सारी चीज़ें जो है आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी, एक ही जगह पे मिल जाएंगी। तो जल्दी से जाओ यार, और सिर्फ इंस्टाग्राम ही क्यों, सारे के सारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सब पे आपको रेडियो ऑलिव मिल जाएगा। जाकर फॉलो करो, हाँ अभी अभी क्या अभी करूँ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और तब तक जो है एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना जो है उंगली मूवी का पाकीज़ा आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे इंजॉय कीजिए। एंड वैसे जितने भी लोगों को उर्दू आती है मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपको पाकीज़ा का मतलब पता है, क्या होता है ज़रा बताओ मुझे आकर चैट पे 3311063 पर। फिलहाल एक अमेजिंग गाना पाकीज़ा आ रहा है, तो इसे जो है इंजॉय कीजिए वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ, और स्टे ट्यून रहिए, कहते रहिए जियो बिंदास। Rika stara rira kukaru, rika oo stara, rika stara rira kukaru.

0: देखो ये तो वैसे कहने का मन नहीं कर रहा, लेकिन कहना पड़ेगा कि मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा आपको चाचा बाय बाय बोल कर, क्योंकि कल वापस भी तो आना है। मैं हूँ आपकी कशिश, मेरे साथ आप लाइफ मस्त है शो एंजॉय कर रहे थे 106.3 रेडियो ऑलिव पर, लेकिन अब मेरे यहाँ से जाने का आपको चाचा बाय बाय करने का वक्त आ गया है। थैंक यू फॉर योर बर्थडे विशेज, बहुत बढ़िया लगा मुझे अपना बर्थडे अपने घर से दूर मना कर भी, ऐसा नहीं लगा कि यार मैं थोड़ी देर के लिए भी अपने घर से दूर हूँ। थैंक यू सो मच, एंड ऐसे ही जो प्यार है वो मुझ पर बरसाते रहिए, रेडियो ऑलिव पर अपना प्यार बरसाते रहिए, इंस्टाग्राम हैंडल को जाकर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको सारी अपडेट्स जो है वो मिलती रहेगी। बाकी 3311063 इज आर नंबर, वहां पर आकर तो आप हमसे बातचीत कर ही सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइए, खाना खाते रहिए, पानी पीते रहिए, सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना। मैं हूं आपकी कशिश, कल मुलाकात होगी लाइफ मस्त है शो पर ही सुबह 10 बजे। स्टे ट्यून, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Year. Yeah, Ghana.

0: सुनो आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर। बी रेडी।

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: हाय, मैं हूँ सारिका। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
0: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क। ओलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर। बी

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
0: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो। ओह नो, फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
0: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
0: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
2: कॉल 7022525।
0: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
3: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
0: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

नमस्कार, माय नेम इज आशीष विद्यार्थी एंड यू आर लिस्निंग टू कतर्स टॉप मोस्ट हिंदी एफएम चैनल 106.3 रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर ऑफर के साथ।
2: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
1: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
2: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टाकुलर offer.

आप सभी का स्वागत है स्वैग के साथ स्वागत है। यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और बांध रखी है तो और कसके बांध लीजिए, क्योंकि यहां पे हम एक उड़ान भरने वाले हैं जहां पे गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं और आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए। 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए क्या हाल है। और यही बोलते हुए कहते हैं जियो बिंदास।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं ना एक छोटा सा एक थॉट आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, हमारे लाइफ में दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे दोस्त लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जब हम मूवीज देखते हैं तो मूवीज में भी कुछ बहुत ही बढ़िया फ्रेंड कैरेक्टर्स हमने देखे होंगे। ठीक है, तो मेरे मन में एक जो कैरेक्टर आता है वो है रहना है तेरे दिल में, जो मैडी का फ्रेंड था। ठीक है, ब्रजेश है उनका असली नाम, मैं कैरेक्टर का नाम भूल गया, बट या ऐसे बहुत सारे फ्रेंड कैरेक्टर्स हैं बॉलीवुड में भी और डिफरेंट डिफरेंट मूवी इंडस्ट्रीज में काफ़ी फेमस फ्रेंड कैरेक्टर्स हैं। इवन विजय देवरकोंडा जो है उनका एक काफ़ी बढ़िया ब्रेक जो है एक मूवी में मिला था जिसमें वो हीरो के फ्रेंड का कैरेक्टर कर रहे थे और उसके थ्रू वो जो है काफ़ी फेमस हुए थे। तो मैं सवाल पूछना ये चाहूँगा कि अगर आपके लाइफ में आप एक मूवी कैरेक्टर को फ्रेंड के तौर पर चाहते हैं, बेस्ट फ्रेंड के तौर पर चाहते हैं, तो कौन सा कैरेक्टर होता, बताइए मुझे 3311063 पर मैसेज करके। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhol.
2: Olive laga aur ho ja richar. Olive recharge.
0: Olive recharge. रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
3: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
1: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, द रिस्पांसिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।

वेलकम बैक, यू आर लिस्टिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो जब भी हम कहीं ट्रैवल करने के लिए जाते हैं तो वहां से जब वापस आते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें याद के तौर पे लेकर आते हैं, उन्हें सोविनियर कहा जाता है, ठीक है। और काफी क्यूट चीज है क्योंकि जब भी हम उस चीज को देखते हैं तो उस पर्टिकुलर ट्रिप के बारे में हमें जो है मेमोरीज जो होते हैं हमारे वो आते हैं वापस, हम रिविजिट करते हैं, काफी अच्छा लगता है। एक यादगार मोमेंट जो हमें वापस जो है रिलीव करने को मिलता है मेंटली दो, बट हाँ, मगर सोवेनियर्स का लाइफ में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें जो हैं हम सोवेनियर बना सकते हैं। जैसे कि मेरे कॉलेज का लास्ट डे जो था उसमें मैं एक वाइट शर्ट पहन के गया था जिसमें मेरे फ्रेंड्स ने लिखा था, बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, उस शर्ट को मैंने संभाल के रखा है, तो मेरे कॉलेज दिनों का एक सोवेनियर है वो। हमारे लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बीते हुए कल के सोवेनियर्स होते हैं। तो अपने बीते हुए कल के एक सोविनियर के बारे में मुझे बताइए। 3311063 पर मैसेज कीजिए और कहिए जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और मैं एक पैराडॉक्स के बारे में बात करना चाहूंगा। इसको मैंने नाम दिया है लिटिल थिंग्स पैराडॉक्स करके। कहते हैं कि लाइफ में छोटी चीजों को या फिर छोटे प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज करना चाहिए, मगर साथ ही साथ हमारे लाइफ में हमारे बड़े बड़े डिसीशंस या फिर बड़े बड़े चेंजेस जो हैं छोटे छोटे हैबिट्स के थ्रू आते हैं। तो छोटी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे जो हमें काफ़ी इनसिग्निफिकेंट लगते हैं हैबिट्स जो होते हैं, वो लॉन्ग रन में बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल खाना खाने के बाद 10 मिनट चलना, इट्स अ स्मॉल थिंग, ठीक है, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट लग सकता है, मगर लॉन्ग रन में आपके हेल्थ को ये बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकता है। सिमिलरली सुबह उठते वक्त उठ के थोड़ी देर बैठ के गहरी सांसें लेना, ये आपके मॉर्निंग को काफ़ी बेहतर कर सकता है। ये सब छोटी हैबिट्स हैं जो आपके लाइफ को बड़े लेवल पे इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। और इसलिए इस पैराडॉक्स के स्टार्टिंग में मैंने बोला था, लोग कहते हैं कि छोटे प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना होता है, उसके साथ साथ छोटे छोटे स्टेप से ही बड़ी बड़ी जर्नी कंप्लीट होती है। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: Olive 106.3 FM Geo Bindas.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: हाई रेडियो ओलिव 106.3 लिसनर्स, दिस इज रणवीर सिंह। स्टे ट्यून्ड।
0: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
4: रेडियो ओलिव नंबर वन। लगा और हो जा रिचार्ज।
5: ओलिव रिचार्ज। ओलिव रिचार्ज। रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर। जियो बिंदास।
4: ओलिव रिचार्ज।
6: This hour is brought to you by
7: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं ना एक छोटी सी चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं, चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कोई नया स्किल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जब भी हम कुछ नया करते हैं तो हमको अपने आप को ना एक फ्रीडम देना होता है, द फ्रीडम टू एम्बैरेस योरसेल्फ। जब तक हम नई चीजें ट्राई नहीं करेंगे, हम सीख नहीं पाएंगे, और जब हम नई चीजें ट्राई करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, तो हम उसमें फॉल्टर करेंगे, हम उसमें फेल होंगे, हम खुद को एम्बैरेस करेंगे, मगर यही तो जर्नी है भाई। जब तक इस प्रोसेस के थ्रू हम नहीं गुजरते, चेंजेस नहीं आएंगे, फ्रस्ट्रेशन आएगा, ये सब आएगा, मगर ये सब उसका हिस्सा है, तो उसके थ्रू लगे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपने आप को स्टार्टिंग में ही एक फ्रीडम देना, वो फ्रीडम है टू एम्बैरेस योरसेल्फ। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि इस 27th अगस्त को बैक टू स्कूल बैश होने वाला है अबू सिद्रा मॉल में। काफी ओवरवेलमिंग रिस्पांस जो है हमें आया है, बहुत सारे लोगों ने जो है रजिस्टर किया है, काफी बढ़िया लगा हमें। तो उसमें से सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को जो है कॉल बैक जाएगा, इनवाइट जाएगा, तो तैयार हो जाइए। और यही बात बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: Venue partner Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner Daiso Japan, you name it, we have it.
1: And
2: Doha Center, shop more, pay less.
1: Old Airport Road, Doha and Alcor.
2: Call 70222525.
1: Creative partner Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
3: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding. At

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
0: Olive Recharge. रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
2: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
1: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा

0: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: अरमान मलिक
0: 106.3 FM रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे। ठीक है, हम सब यहां पे क्यों आए हैं? लाइफ को एक बहुत ही बढ़िया डायरेक्शन देने के लिए, अच्छे से पैसे कमाने के लिए, थोड़ा और बेहतर तरीके से जीने के लिए, है ना? क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। बिना पैसों के लाइफ बहुत ही यार मंडेन डल सी लग जाती है, एंड इट्स अ रियलिटी। ठीक है, कितना भी हम इसको नेगेट करने की कोशिश करें, कितना भी हम इसको नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं, भाई पैसा बहुत कुछ है, ये संसार का परम सत्य है। ठीक है, पैसा बहुत कुछ है, पैसा ही हमारी वैल्यू डिसाइड करता है सोसाइटी में। इस टाइप की जो है एक थिंकिंग जो है हो चुकी है, एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। और तो पैसा बनाना बहुत जरूरी है, मगर सवाल मेरा ये है कि अगर पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा एक प्रायोरिटी नहीं होता, सबके पास एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस होते, सबके पास एम्पल अमाउंट ऑफ पैसे होते ताकि वो जो करना कर सके, तो आप क्या करते बताइए मुझे। मैसेज कीजिए 3311106 पर। और यही बोलते हैं हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: Oh no! फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अब उसिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। वेन्यू पार्टनर अबूसिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबूसिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
2: कॉल 7022525।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
3: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding. At the

0: चार्ज हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुदेव रेडियो ओनली 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है। लाइफ में हमें बहुत सारे लोगों ने जो है एडवाइसेस दिए हैं, हमारे बड़ों ने दिए हैं, हमारे पीयर्स ने दिए हैं, हमारे टीचर्स ने दिए हैं, और कलीग्स ने दिए हैं, बॉसेस ने दिए हैं, मैनेजर्स ने दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने हमें एडवाइसेस दिए हैं, मगर आपके लाइफ का सबसे बेस्ट एडवाइस कौन सा था? मैसेज कीजिए मुझे 3311063 पर, और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: आप सभी का फिर से एक और बार इस्तकबाल है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम आपको बताना चाहेंगे कि 27th अगस्त को अबू सिद्रा मॉल में रखे होने वाला है बैक टू स्कूल बैश, और बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हमारे पास आए हैं। उसमें से सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स के पास जो है कॉल बैक जाएगा, इनवाइट जाएगा, एक इवनिंग जहां पे हम स्कूल खुलने से पहले फुल ऑन मस्ती करेंगे, एंटरटेनमेंट होगा, गेम्स होंगे और बहुत ही मजा आएगा, और गिफ्ट्स तो होंगे ही होंगे बच्चों के लिए। तो यही बात बोलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
1: And
2: Doha Center, shop more, pay less.
1: Old Airport Road, Doha and Alcor.
2: Call 70222525.
1: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
3: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: Kusum. Radio Olive par aane wala gaana cool song of the hour.
1: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
2: Kusum.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

यार इंस्टाग्राम खोलिए, रेडियो ऑलिव सर्च कीजिए, और वहां पे अगर एक ब्लू कलर में व्हाइट लेटर्स में फॉलो दिख रहा है तो फॉलो कीजिए, और अगर फॉलोइंग दिख रहा है बहुत बढ़िया। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो जैसे कि मैंने बोला, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, और अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, हमारे कंटेंट को चेकआउट कीजिए। बहुत सारे कंटेंट जो है हमारे पेज पर हम डालते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे कॉन्टेस्ट भी जो है हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आते हैं, तो आपके पास गिफ्ट जीतने के मौके भी हैं, कॉन्टेंट को एंजॉय करने के मौके भी हैं। तो यही बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
1: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
2: This hour is brought to you by
3: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

तो भाई धीरे धीरे टाटा बाय गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, और यही बोलते हुए हम जरा निकलते हैं क्योंकि 3 घंटे बहुत जल्दी निकल गए, पता ही नहीं चला 5 बजने वाले हैं। तो जाते जाते जाते यही दरख्वास्त है आपसे कि आप अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना, पर हमें जरा दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदा।

0: ਵਧੀਆ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਹੈਪੀ ਸੈਟਰਡੇ लेकिन आज तो पहले पूरे दिन के बारे में पूछेंगे कि आपका आज का दिन कैसा रहा। कोई नहीं, अगर आपसे पूछता तो मैं हूं ना यार, हर रोज आपसे पूछती हूँ। अगर आप कुछ वेंट आउट सेशन करना चाहते हैं मेरे साथ थ्रू व्हाट्सएप या फिर स्टूडियो के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, तो दोनों नंबर अवेलेबल है। आपका मूड क्या है, वॉइस नोट भेजने का है तो 3311063 पे भेज दो। स्टूडियो के नंबर पे कॉल करना चाहते हो 4444106 आप मुझे कॉल कर सकते हो। अपन मिलके चुगली करेंगे यार, बड़ा मजा आता है मुझे। 3311063 वही नंबर है यार। सुनते रहो रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहो जियो बिंदास।
1: Here we go.

0: खाना खत्म पैसा हजाम।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
2: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
3: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
2: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
3: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
2: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
4: सलाम प्रणाम नमस्कार वणक्कम, मैं हूं जैकी श्रॉफ।
5: रेडियो 106.3 जियो बिंदास।
1: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
6: रेडियो ओलिव नंबर वन।
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
8: सिमरन के साथ।
9: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
10: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
11: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: फिर दोस्तों कैसा रहा आपका वीकेंड? इसी चक्कर में क्या होता है कि बर्थडे की सेलिब्रेशन जो है वो जोरों शोरों से पहले से स्टार्ट हो जाती है. तो क्या होता है कि जब आप फैमिली से दूर होते हो तो आपके दोस्त जो है ना वो आपकी फैमिली जो है बनते हैं और आपको स्पेशल फील जो है वो करवाते. सो थर्सडे मेरी एक प्री बर्थडे पार्टी थी, सरप्राइज पार्टी. सो वो पार्टी मैंने अटेंड करी, बहुत सारा फन करा यार. एंड फ्राइडे ऑफकोर्स मैंने रेस्ट की क्योंकि मुझे पता है कि मेरी आज की रात जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि आज बर्थडे वाली नाइट है. मतलब बर्थडे तो वैसे कल है लेकिन आज बर्थडे वाली नाइट है तो बहुत सारा फन जो है वो करने वाले हैं. सो कुल मिला के वीकेंड जो है वो अच्छा रहा, मज़ेदार रहा क्योंकि कशिश और तनीषा का भी बर्थडे था फ्राइडे को. सो हमने एक दिन पहले ही बहुत सारा फन जो था वो किया. सो या कुल मिला के आपकी जो ऑलिव की आरजेज है, फीमेल आरजेज हैं, उनके तो बर्थडे बैक टू बैक चल रहे हैं. सो या मेरा वीकेंड ऐसा रहा मज़ेदार और मैंने रेस्ट भी की और एक आध सीरीज नहीं एक मूवी भी मैंने देखी. सो या लैला मजनू मैंने फिर से देखी, मैंने कोई रील देख ली थी और मेरा मन किया यार मैंने हाफ देखी लैला मजनू वापस से. सो या कुल मिला के ऑल ओवर अच्छा रहा मेरा वीकेंड. आप भी बता सकते हैं 3311063 पर. जियो बिंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM. इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

पता है कि अगले महीने से मौसम जो है थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू हो जाएगा, तो बहुत सारे इवेंट्स जो है अपने कतर में लाइंड अप है। अक्टूबर में कतर का फेवरेट पॉप कल्चर इवेंट जो है वो वापस आने वाला है, जहां पर गेमर्स एंड बहुत सारी चीजें, म्यूजिक, फिल्म, जो फिल्म एंथुसियास्ट है वो मतलब सब कुछ इस को एंजॉय करने वाले हैं। एक लाइवली मार्केट, परफॉर्मर, गेम्स होने वाली है, बहुत कुछ वीकेंड का फन होने वाला है, जिसका नाम है गीकेंड। जी हाँ, ये गीकेंड जो है वो गीक डॉम बिल्डिंग है लुसेल बॉलीवुड में। सो 1 से लेकर 3 अक्टूबर तक यहाँ पर ये होने वाला है, दोपहर 3 से लेकर रात के 11 बजे तक, और 25 रियाल की सिर्फ टिकट रहे। बाकी की इन्फॉर्मेशन जाने से पहले मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी इवेंट रहता है ना, हम भी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन जाने से पहले आप लोग भी उस इवेंट के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके जाइएगा, ठीक है। सिमरन कौर आपकी साथ, जियो।

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
0: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

देखो दोस्तों, अगर आपको कार्स पसंद है तो आपको ये भी पसंद आएगा। कतर क्लासिक कार कॉन्टेस्ट एंड एग्जीबिशन जो है वो होने वाला है, जहां पर आप क्लासिक एंड विंटेज कार्स को एंजॉय करोगे, आपकी आंखों को ट्रीट मिलने वाली है। सो ये 17 से लेके 22 नवंबर के बीच में होने वाला है। ओके, सो ये कंप्लीटली फ्री है, सुबह 11 से लेके रात के 11 बजे तक पर्ल आइलैंड में यहां पर आप जा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अभी टाइम है, बहुत सारे इवेंट्स हैं, जैसे कि मैंने बोला कि अपने कतर में आप होंगे क्योंकि मौसम बदलता है, तो मौसम बदलना कतर में एक मेले की तरह होता है, एक फेस्टिवल की तरह होता है। सर, इस फेस्टिवल में आपको बहुत कुछ एंजॉय करने के लिए मिलेगा, क्योंकि जब मौसम अच्छा है ना तो बाहर निकलने का भी मजा आ जाता है यार। सो जैसे जैसे चीजें पता लगती रहेंगी अपने कतर में, जो जो हो रहा है हम आपको बताते रहेंगे। बट अगर आप भी कहीं पे जाते हो कतर में और कुछ अच्छा हो रहा है तो आप हमारे साथ भी शेयर किया करो यार। 3311106 3 पर जियो बिंदास।

से स्कूल। अरे समर वेकेशन खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अब उसिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉन स्टॉप धमाल। किताब

0: मैं कह रही सोनियों की दादी की हालचाल मौसम देहाल
1: मौसम
0: सिमरन कौर आपके साथ और आज का मैक्सिमम टेम्परेचर है 40 फील्स लाइक 45 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम तो था 40 एंड मिनिमम जो है 34 डिग्री सेल्सियस होने वाला है. विंड जो है 14 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है लेकिन जैसे ही रात होती रहेगी अभी 7 से लेगी 9 बजे तक अगर ह्यूमिडिटी की बात करो तो 60-65 की रेंज में ह्यूमिडिटी जो है वो होने वाली है 37 डिग्री जो है वो टेम्परेचर के साथ ओके एंड रात को 10 बजे जो है रात को 10 से लेकर मिडनाइट तक 70-75% जो है परसेंट ह्यूमिडिटी जो है वो थिक और हैवी ह्यूमिडिटी होने वाली है. तो ऐसे टाइम पे जितने भी लोग हैं वो ड्राइव करने वाले प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एंड अर्ली मॉर्निंग और 85-90% जो है वो होने वाली है. सो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा खराब करती है स्पेशली जो लोग ड्राइव कर रहे हैं बाहर निकल रहे हैं उनके लिए. सिमरन कौर आपके साथ जियो बिंदास

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: آپ سن رہے ہیں قطر کا نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ریڈیو اولیو 106.3 ایف ایم.
2: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
2: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
3: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
4: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
5: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
4: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
5: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा.
4: द वेट इज फाइनली ओवर. बी रेडी टू शॉप.
6: हेलो नमस्कार, मम्मा मिया, मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ओलिव पर. इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे,
7: आरजे सिमरन के साथ.
8: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
9: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
10: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप सब ने रजिस्टर करवाया बैक टू स्कूल बैच के लिए। रजिस्ट्रेशन बंद हो चुकी है बट मैं आप सब लोगों को ये याद दिलाना चाहूंगी कि बैक टू स्कूल की आप जिन लोगों ने भी रजिस्टर करवाया था आप सब लोग जो है वो इनवाइटेड है जिन जिन लोगों ने यू नो रजिस्टर करवाया था अबू सिद्रा मॉल के लिए इस 27 अगस्त को दोपहर 3 से लेके शाम के 7 बजे तक जो है वो बैक टू स्कूल बैच होने वाला है। तो आप लोग जो है वो आ जाइए अगर आपने रजिस्टर करवाया है तो नॉन स्टॉप फन करेंगे आपके बच्चों के साथ और क्या चाहिए यार लाइफ में।
1: वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान यू नेम इट वी हैव इट।
1: एंड
2: दोहा सेंटर शॉप मोर पे लेस
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
2: कॉल 7022525।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
3: Pizza Partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.

0: Kusum. Radio Olive par aane wala gaana cool song of the hour.
1: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कुसुम।

0: स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: बात तो मुझे लग रहा है कि आपको भी पता ही होगी।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
2: व्हाट द वायरल ये बात है।
0: लेकिन अगर आपको नहीं पता तो बता देते हैं। करीना की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी। करीना कपूर जिम से निकल रही थी, जहां पर पता नहीं वो ब्लोटेड थी क्या था, सब लोग ये बोल रहे थे कि भाई करीना कपूर एक अभी उनके घर पे एक और खुशी आने वाली है। उनकी प्रेगनेंसी की रूमर्स चल रही थी, तो बाद में उन्होंने कन्फर्म किया उनकी टीम ने कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ पिज्जा पास्ता है और कुछ नहीं है। सो मैंने तनीषा को भी भेजी वो न्यूज़। आई एम लाइक यार ये मत तो सही है यार, बढ़िया है, लेकिन क्या है कि किसी भी न्यूज़ में जंप करने से पहले थोड़ा देख लेना चाहिए, थोड़ी रिसर्च जो है वो कर लेनी चाहिए। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिमरन कौर आपके साथ।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: अगर मैं आपको एक्स्ट्रा वर्ड बोलूं तो आपको क्या लगेगा कि यार एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा?
1: अच्छा जी,
0: ऐसा नहीं है। जेंजी लिंगो में एक्स्ट्रा को डिकोड करें तो उनका मतलब ये है कि कोई इंसान जो बहुत ज्यादा ओवर एक्सेसिव हो रहा है, ओवर ड्रामेटिक हो रहा है, ओवर द टॉप हो रहा है, तो उसके लिए वर्ड जो है वो यूज किया जाता है एक्स्ट्रा। सो या सिमरन गौर आपके साथ, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके मैसेजेस के लिए जो कि आप मुझे भेज रहे हैं। अगले घंटे नेम गेम खेलेंगे तो आप लोगों के भी नाम ले लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ। देखो, अगर मुझे अटेंशन पूरी चाहिए ना तो अटेंशन मैं भी आपको पूरी देती हूँ। जी ओ बिंदास
2: Radio Olive Park.
3: Fresh. Ye gana fresh.
2: Fresh song of the hour.
3: Ye gana.

0: बावरा समन भागे तेरे पीछे, बावरा समन, बावरा समन।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: और आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं,
1: जीवन के सफर में सवारी चाहिए, अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए।
0: बिल्कुल खिलाड़ी मैं कहती सनियों की दादी की अलजल सत श्री अकाल सिमरन कौर आपके साथ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस फिल्म के बारे में मैंने सुना है, ये फिल्म जो है वो मैंने नहीं देखी है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि खिलाड़ी सीरीज जो अक्षय कुमार की, ये फिल्म पहली फ्लॉप थी अक्षय कुमार की जो खिलाड़ी सीरीज में थी। एंड ये जो फिल्म थी पहली कोलैबोरेशन थी बिटवीन डेविड धवन एंड अक्षय कुमार, और ये फिल्म में कॉमेडी ही नहीं थी, मतलब मज़ा नहीं आया लोगों को। और ममता कुलकर्णी जो थी वो पहली चॉइस थी जूही चावला से पहले, एंड अक्षय कुमार एंड जूही चावला की ये पहली फिल्म थी। और भी इस फिल्म के बारे में बातें बताऊंगी, अभी तो बात टाइम है अपने पास। सुनते रहो रेडियो ओलिव कोर, कहते रहो जियो बिंदास।

0: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
2: मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो अलूट पे।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी।
1: और आज हम जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं वो है मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी। बहुत सारी उम्मीदें थी लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई। एंड ये जो फिल्म थी वो फ्लैट 6 मंथ में इसकी शूटिंग जो थी वो कंप्लीट हुई थी। एंड इस फिल्म की शूटिंग के दौरान क्या हुआ कि डेविड धवन जो थे वो एक खाली स्विमिंग पूल में गिर गए थे। उसके बाद बहुत ही ड्रामेटिक सिचुएशन हुई कि अक्षय कुमार ने क्विकली जो है वो उनको उठाया डेविड धवन को और साथ के हॉस्पिटल में ले गए। सो या और भी बहुत सारी बातें इस फिल्म के बारे में, लेकिन मेरी बातें और भी हैं जो कि मैंने आपसे करनी है। अगर मैं इसी फिल्म के बारे में बात करती रहूंगी तो बाकी बातें कैसे करूंगी। इसी घंटे रियलिटी चेक होगा और इसी घंटे करने वाली हूँ आप लोगों के नाम की बात यानी कि नेम गेम। थोड़ा सा इंतजार, सुनते रहो रेडियो ऑलिव गोर के अंदर जियो बिंदास।
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉन स्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले

0: आते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
1: सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: देखो अगर आप में लैक ऑफ मोटिवेशन है तो मैं हूं ना यार।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: ये काम मैं बड़े अच्छे से कर लेती हूँ। बहुत सारे लोग जब मुझे सुन रहे हैं सबका अलग अलग मूड है, तो कुछ लोगों का अगर ऐसा मूड है कि वो अपनी लाइफ में अभी ये फील कर रहे हैं कि यार लैक ऑफ मोटिवेशन, आपने बहुत ट्राई किया किसी चीज को करने का, किसी इंसान से बात करने का या अपनी लाइफ में कोई चीज अचीव करने का, और आपको लग रहा है यार इट्स नॉट हैपनिंग। लेकिन लेट मी टेल यू डार्लिंग वन थिंग कि हर चीज़ का जो एक टाइम होता है ना वो होने का होता है, और कभी कभी लाइफ में पॉज आ जाता है और आपको लगता है ये चीज़ें यहीं पे ख़त्म हो गई हैं, रुक गई हैं। नहीं, तो यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी ऊपर वाला आपकी भी पेशेंस को चेक करता है, कभी कभी वो थोड़ा सा तड़पा के ही आपको जो है वो चीज़ देता है ताकि आपको उस चीज़ की वैल्यू जो है वो बनी रहे। तो अभी अगर लाइफ में किसी चीज़ को लेकर जो आप जा रहे थे वो ब्रेक लग गया है, तो थोड़ा सा फेथ रखिए, अगर वो चीज़ सही है और वो चीज़ आपके लिए है तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। थोड़ा सा स्माइल करो यार, सुमन गौर का शो सुन रहे हो, सुनते रहो रेडियो ऑलिव गौर, कहते रहो जियो बिंदास। बाकी वापस लौट के बहुत सारे चेहरों पे स्माइल आने वाली है क्योंकि मैं नेम गेम खेलने वाली हूँ यार।

0: निशानियां कंधे।
1: हाँ जी दोस्तों, फिर अपना नाम सुनने के लिए तैयार हो? चलो फिर और अगर आप चाहते कि आपका नाम मैं अभी कभी बोल दूं तो मैं तो तैयार बैठी हूँ, रेडी द तैयार हूँ मैं। सो 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, एक बार आराम से बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि सिमरन तुम बहुत जल्दी जल्दी बोलती हो। 3311063 ये इससे ज्यादा स्लो नहीं हो सकती यार। चलो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके भेजो अपना नाम और मैं आप लोगों के नाम जो है वो बोलती हूँ। आसमा, यूसुफ, सैमी, अरमान, गुची नाम नहीं होता है दोस्त, क्या कर रहे हो यार, टाइम नहीं खराब किया करो। सलीम जी थैंक यू सो मच, हिमकुश जी थैंक यू सो मच, बैनर्जी जी थैंक यू सो मच, नजीम जी थैंक यू सो मच, अब्रार जी थैंक यू सो मच, नीलोफर जी थैंक यू सो मच, जस्सी जी थैंक यू सो मच, राजा जी थैंक यू सो मच, गुलाम जी थैंक यू सो मच, अब्रार जी थैंक यू सो मच, अब्दुर जी थैंक यू सो मच, नवान जी थैंक यू सो मच, राज जी थैंक यू सो मच, ये शादीशुदा राज होंगे फॉर श्योर, रवि जी थैंक यू सो मच, एके जी थैंक यू सो मच, शेख जी थैंक यू सो मच, अदील जी थैंक यू सो मच, शाहबाज जी, नईम जी, अनुबा जी थैंक यू सो मच, दानिश जी थैंक यू सो मच, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के नाम ले लिया बेटा, अब आप थैंक यू लिखो और बनाओ अपना फेवरेट वाला इमोजी। बस इंतजार कर रही हूँ।

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas. अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर ऑफर के साथ।
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
0: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।

0: बैक टू स्कूल बैच के लिए आप में से बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, रजिस्टर करवाया, राइट? आपके बच्चों के साथ बहुत सारा फन होने वाला है, बहुत सारी गेम्स खेलेंगे। सो कॉल नहीं आएगा आपको हमारी तरफ से, लेकिन जिन जिन लोगों ने रजिस्टर करवा लिया बैक टू स्कूल बैश के लिए, हमारी वेबसाइट पे जाके आप सब लोग इनवाइटेड हो। तो सब लोग आ जाओ यार, मजे करेंगे।
1: वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
2: कॉल 7022525।
1: क्रिएटिव पार्टनर, प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
3: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.

0: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
1: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ।
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

रहते हुए कतर के रूल्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बात मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। जो है वो कभी कभी इंसानों को जो है ना वो याद करवाने पड़ते हैं ताकि आप भूल ना जाए, रिमाइंडर देना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन बहुत सारे लोगों को ये याद दिलाना जरूरी है, या फिर बहुत सारे लोग जो हैं उनको पता ही नहीं होगा अबाउट ड्रोन। ड्रोन हमको देखने में बहुत ज्यादा नॉर्मल और फन चीज लगती है, लेकिन कतर में आपको अगर ड्रोन उड़ाना है तो आपको इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। सो अगर आपने बिना लाइसेंस के ड्रोन उड़ा दिया तो आपको 7 साल की जेल और 300,000 कतरी रियाल का फाइन भी भरना पड़ सकता है। सो लेने के देने ना पड़ जाए, तो वही बोलती हूँ कि जिस कंट्री में आप रहते हो उसके रूल फॉलो करने बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप भी आराम से रह सके। और जिनके यहाँ पे हम रह रहे हैं, जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, जो कंट्री हमारे ड्रीम्स पूरे करवा रही है, सो हम उनके रूल्स को भी फॉलो करें ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो हमारी वजह से। ठीक है, सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।

अच्छा डार्लिंग तो हम चलते हैं लेकिन कल होती आपसे मुलाकात। कल का दिन बड़ा खास है, उसको थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि कल सिमरन कौर का हैप्पी वाला बर्थडे है। तो भर भर के ट्रक भर के आपकी विशेष चाहिए मुझे। सो कल शाम को मिलेंगे शो में 5 बजे, मस्त मजा करेंगे। देखो आप लोगों के लिए छुट्टी नहीं ले रही हूँ, वरना बर्थडे के दिन तो हर कोई छुट्टी ले लेता है यार, पर मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगेगा और आप लोगों की बहुत सारी ब्लेसिंग्स की जरूरत है। सो या कल शाम को 5 बजे मिलते हैं। टिल देन ओवर थिंकिंग मत करिएगा, ठीक है? खाने पीने को ऐश कर देना, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू 100 किलो।

listening to Radio Olive 106.3 FM. Shackman की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।

जी रहे हैं या अपनी जिंदगी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम मिडनाइट लाउंज और आज है सैटरडे। एक बार इमेजिन कीजिए, आप किसी बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट में बैठे हो, खाना सामने आया, एम्बियंस बहुत ही शानदार है, म्यूजिक चल रहा है और हमारा पहला थॉट, एक मिनट फोटो ले लेते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने खुद के साथ नहीं किया, मतलब मैं खुद भी यही करती हूँ, फिर फोटो, फिर एंगल, फिर स्टोरी, और कभी कभी तो मोमेंट खत्म होने के बाद हमें याद आता है कि हमने उसे जिया कम और रिकॉर्ड ज़्यादा किया। टेक्नोलॉजी ने हमें हर खूबसूरत पल को सेव करने की सुविधा तो दे दी है, लेकिन एक सवाल भी है, क्या हर खूबसूरत पल को प्रूफ की ज़रूरत है? कुछ मेमोरीज ऐसी भी हो सकती हैं जिनका कोई फोटोग्राफ हो ही ना, कोई स्टोरी ना हो, कोई लाइक ना हो, बस आप हो और वो मोमेंट है। तो आज सैटरडे का सवाल ये है कि अगर आपके वीकेंड की कोई भी फोटो कभी किसी को दिखाई ही ना दे तो क्या आप फिर से वही फोटोज लेंगे? बाय द वे, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मोमेंट्स एक्चुअली कैप्चर करने भी चाहिए, बट यू टेल मी योर स्टोरी, आपको क्या लगता है? 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर। बी रेडी।

तो चलिए आज रेस्टोरेंट में एक छोटा सा पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं। चार लोग हैं, पहला मेन्यू खोलते ही बोलता है कि मुझे पता है कि क्या लेना है, दूसरा पूछता है कि तुम लोग क्या ऑर्डर कर रहे हो, और तीसरा हमेशा वही ऑर्डर करता है जो उसे पहले से पसंद है, और चौथा मेन्यू में सबसे अजीब चीज़ देखकर बोलता है लेट्स ट्राई दिस। ये चौथा वाला पर्सन मैं हूँ। मुझे हर बार ऐसा लगता है कि कहीं नई जगह पर जा रहे हैं तो कुछ नया ट्राई करें। मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं, कभी एवोकाडो की चाट ट्राई की है, तो कभी माचा जो किसी को पसंद नहीं आता, पर फिर भी मैंने ट्राई किया है। फनी है, लेकिन छोटी छोटी चॉइसेस अक्सर हमारे कम्फर्ट जोन के बारे में बताती हैं। क्या हम फैमिली और चीज़ों से सेफ फील करते हैं, क्या हमें नया एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर ये सिर्फ खाना नहीं है, ट्रैवल, करियर, रिलेशनशिप्स, हर जगह हम लोग सेफ चॉइसेस चुनते हैं और कुछ लोग एक्सपेरिमेंट। लेकिन शायद कोई चॉइसेस सही या गलत नहीं होती, कभी बिरयानी ही चाहिए होती है और कभी लाइफ में एक नया फ्लेवर भी चाहिए होता है। तो आप रेस्टोरेंट में कौन से कैरेक्टर हैं, सेफ चॉइस वाले या दूसरे को देखकर ऑर्डर करने वाले, या आज कुछ नया ट्राई करते हैं वाले? यू टेल मी। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM। मैं हूं मुस्कान, नंबर इज सेम 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: ये है मिडनाइट लाउंज।

एक पुरानी कहानी सुनते सुनाते कभी ऐसा हुआ है कि दोस्त बीच में बोल दे, रुको ऐसा हुआ ही नहीं था, और आप कॉन्फिडेंटली कहो, भाई मुझे बिल्कुल याद है। यही मेमोरी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। हम सोचते हैं कि मेमोरी एक वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो हुआ एग्जैक्टली वैसा ही सेव हो गया, लेकिन रिसर्च बताती है कि मेमोरी रिकंस्ट्रक्ट होती है। हर बार जब हम कोई पुरानी घटना याद करते हैं तो थोड़ा प्रेजेंट भी मिला देते हैं, इसीलिए 10 साल पुरानी कहानी 10 साल बाद थोड़ी अलग सुनाई देती है। और शायद यही वजह है कि मेमोरी सिर्फ घटनाएं नहीं होती, वो हमारी बनाई हुई कहानियां भी होती हैं। तो अगर आपकी कोई फेवरेट चाइल्डहुड स्टोरी है तो हो सकता है उसमें कुछ डिटेल्स गलत हो, लेकिन फीलिंग्स वो बिल्कुल सही होंगी। सो आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी स्टोरी है जिसे आप इतनी बार सुना चुके हो कि अब आपको भी नहीं पता कि ओरिजिनल क्या था और आपका वर्जन क्या है? बाय द वे, जो लोग बहुत अच्छे से स्टोरी टेलिंग करते हैं उनकी बात ही अलग है, उनके साथ आप घंटों बिता सकते हो। मैं कल एक एक फ्रेंड से मिली थी जिससे मैं जिस बारे में पूछूं वो एक नई कहानी सुनाना शुरू कर देती थी। एंड आई वाज लाइक यार इसको कितने अच्छे से स्टोरी टेलिंग आता है, और ये भी एक आर्ट है बाय द वे। यू टेल मी, आपको किस तरह के लोग पसंद है? 3311106 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

ये है मिडनाइट लाउंज। ओ नो, फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशन खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉन स्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले

गुड इवनिंग। सोचिए आज सैटरडे है, आपका फोन बंद है, व्हाट्सएप भी नहीं, इंस्टाग्राम भी नहीं और ईमेल भी नहीं, कोई आपको रीच ही नहीं कर सकता। पहले 10 मिनट में शांति, फिर शायद हाथ फोन को ढूंढेगा। और क्योंकि आज लग्जरी सिर्फ जो एक्सपेंसिव होटल्स या फैंसी कार्स तो है नहीं, कभी कभी लग्जरी है किसी को जवाब ना देना और उसकी फ्रीडम होना। सो हम ना हमेशा अवेलेबल रहते हैं, सीन टाइपिंग, लास्ट सीन ऑनलाइन, और धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि अगर हम तुरंत रिप्लाई नहीं करेंगे तो कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन हर मैसेज अर्जेंट नहीं होता, हर कॉल ज़रूरी नहीं होता, और हर टाइम अवेलेबल रहना केयर नहीं, कभी कभी एक्सॉशन बन जाता है। सो आई वॉज फीलिंग कि आज सैटरडे एक्सपेरिमेंट करके देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार अब मतलब अब मेरा हो गया है, कल से वापस से यू नो ऑफिस जाना है और मैं बाहर नहीं जाना चाहती या चाहता, सो कुछ घंटे के लिए दुनिया से गायब होने की परमिशन मिल जाए आपको, तो आप मुझे बताइए आप फ़ोन बंद करके सबसे पहले क्या करोगे। 3311063 इज़ माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

listening Radio Olive 106.3 FM with this beautiful track जो भी आपने सुना. So basically यहाँ पर Midnight Lounge में हम हर रात कुछ खूबसूरत टॉपिक्स लेकर आते हैं और बातें करते हैं. So कभी किसी इंसान से मिले हैं और पहली कुछ कॉन्वर्सेशन में ही लगा कि इसके सामने मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता. आप चुप हैं तो भी ऑकवर्ड नहीं है, आप परेशान हैं तो आपको प्रिटेंड नहीं करना पड़ रहा, आप हंस रहे हैं तो खुलकर हंस सकते हैं. और शायद यही होम की सबसे खूबसूरत डेफिनेशन है. होम ना हमेशा कोई एड्रेस नहीं होता, कभी कोई दोस्त, कभी कोई सिबलिंग, कभी कोई एक ऐसा इंसान जिससे लाइफ में बहुत बाद में मिले लेकिन उसके साथ बैठकर लगता है कि यहाँ पर मैं सेफ हूँ. हम दुनिया में बहुत लोगों से मिलते हैं लेकिन कुछ ही लोगों के सामने हमें अपनी पर्सनालिटी का पासवर्ड नहीं डालना पड़ता. सो आज रात थोड़ा सा पर्सनल सवाल आपसे पूछती हूँ, आपकी ज़िंदगी में वो कौन है जिसके साथ आपको खुद को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको सोचना नहीं पड़ता, कोई फिल्टर्स नहीं लगाने पड़ते? और अगर आपके जीवन में मतलब ऐसा कोई है, देन यू आर blessed, you have something in your life. You are listening Radio Olive, number hai 3311063. Stay tuned, Jio Bindas.

0: फिर भी जान है मेरी।
1: ये है मिडनाइट लाउंज,
2: ये है मिडनाइट लाउंज।
3: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3।

वेरी गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम मिडनाइट लाउंज। सैटरडे शॉपिंग का एक यूनिवर्सल डायलॉग है, ये जरूरी नहीं है लेकिन बहुत अच्छा है। मतलब जब भी मैं फ्राइडे सैटरडे को घर से बाहर निकलती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे खरीदने का प्लान नहीं होता, पर वो इतनी ऑफर में चल रही होती हैं या इतना अच्छा लग रहा होता है देख के कि ऐसा लगता है चलो ले लेते हैं। फिर घर आकर कपबोर्ड खोलता है और किसी कैटेगरी की 3 चीज़ें पहले से मौजूद होती हैं, फिर भी नया क्यों खरीदा? क्योंकि शॉपिंग हमेशा चीज़ खरीदने के बारे में नहीं होती। कभी रिवॉर्ड होता है, पूरा वीक काम किया तो कुछ तो खुद के लिए करते हैं, कभी मूड बदलने के लिए, तो कभी हमें लगता है कि नई चीज़ का मतलब थोड़ा नया मैं भी। लेकिन इंटरेस्टिंग सवाल क्या है पता है आपको? हम चीज़ें खरीदते खरीदते कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि चीज़ें हमारी ज़रूरत से ज़्यादा आइडेंटिटी डिफाइन करने लगती हैं? अगली बार कुछ खरीदने से पहले एक सवाल पूछेगा, क्योंकि मैंने ये स्टार्ट किया है, मुझे ये चीज़ चाहिए या नहीं, या मुझे अभी अच्छा फील करना है या एक्चुअली सिर्फ इसे खरीदना है। और ऑनेस्टली बताइए कि आपकी सबसे यूजलेस लेकिन फेवरेट परचेस कौन सी है? 3311106 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: ये है मिडनाइट लव।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. हम सब कुछ ऐसे रूल्स फॉलो करते हैं जिन्हें किसी ने ऑफिशियली बनाया ही नहीं है. इनविटेशन आया, आऊंगा. मन में नहीं आना है. कोई पूछता है कि हाउ आर यू, हम कहते हैं कि आई एम फाइन, भले ही अंदर पूरा तूफान चल रहा होता है. और अगर कोई कह दे कि वीकेंड पर क्या कर रहे हो, तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं बोलना भी मतलब एक पनिशमेंट सा हो जाएगा. लेकिन ये अनरिटन रूल्स आखिर आए कहाँ से हैं? सोसाइटी ने हमें सिखाया कि पोलाइट कैसे रहना है, लेकिन शायद हमें ये भी सीखना चाहिए कि अपने लिए ऑनेस्ट कैसे रहना है. हर नो रूड नहीं होता, हर इन्विटेशन एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं होता, और हर सवाल का कम्फर्टेबल आंसर देना भी ज़रूरी नहीं होता. तो आज का थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल पूछती हूँ आपसे. अगर सोसाइटी का सिर्फ एक अनरिटन रूल डिलीट कर सकते तो कौन सा होता? क्या डिलीट करते आप? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ना बोलने वाला रूडनेस जो फील होती है ना, मुझे तो ये डिलीट करना था. क्योंकि हर बार जब मैं किसी चीज़ के लिए मना करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई गलत कर दिया कुछ. बाय द वे, नंबर इज सेम, 3311 1063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और ये है मिडनाइट लाउंज.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Geo Bindas.
1: ये है मिडनाइट लाउंज,
2: ये है मिडनाइट लाउंज.
3: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
4: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
3: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
4: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा.
3: द वेट इज फाइनली ओवर. बी रेडी टू शॉप.
0: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन Radio Olive 106.3 FM.

गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. अब मेरे जाने का वक्त इतनी जल्दी हो जाता है कि ऐसा लगता है कि यार कुछ बातें तो अभी बाकी रह गई. सो जाते जाते बात करते हैं कि अब सैटरडे नाइट को आखिरी कहानी ये मैं आपको सुनाती हूँ. कल से फिर से वही नया हफ्ता, नई वीक और नई कहानियाँ, नए ईमेल्स, नए मतलब बहुत सारे टारगेट्स के साथ आप ऑफिस जाओगे. अपनी सबसे अच्छी वीकेंड की मेमोरी याद कीजिए. क्या वो कोई परफेक्ट प्लान ट्रिप थी या शायद एक रैंडम ड्राइव? और हो सकता है कि घर पर सिर्फ अच्छे से यू नो मैनेज किया सो दैट अगला हफ्ता जो है वो पूरा ग्रॉसरी या यू नो खाने पीने को लेके परेशानी ना हो. किसी दोस्त से अचानक घर आ जाने की खुशी या कुछ ऐसा जो रात के 2 बजे बेवजह हंसाते रहना या बस किसी कैफे में बैठकर घंटों बातें करना. फनी बात यह है कि हम मेमोरीज बनाने के लिए प्लान्स बनाते हैं लेकिन अक्सर बेस्ट मेमोरीज प्लान के बाहर ही बन जाती हैं क्योंकि प्लान आपको डेस्टिनेशन देता है लेकिन अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स जो हैं वो आपको स्टोरी देते हैं. इसीलिए शायद हर वीकेंड को कम्प्लीटली स्केड्यूल करने की ज़रूरत नहीं होती. कुछ स्पेसेस छोड़िए, किस्मत को भी थोड़ा स्क्रिप्ट लिखने दीजिए. और आज की आखिरी बात यही है कि आपकी लाइफ का सबसे अच्छा वीकेंड मोमेंट कौन सा था जो बिल्कुल प्लान नहीं था. नंबर इज 3311063. मैं हूँ मुस्कान और ये था मिडनाइट लाउंज, जहाँ कुछ रातें प्लान नहीं होती, बस याद बन जाती हैं. सो फॉर नाउ, गुड नाइट. सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: ये है मिडनाइट लाउंज।

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंद।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM। जियो बिंदास।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: बेबी को बेस पसंद है।
1: You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindaas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।